तो कैसा लगा आपको गाना? मैं शिव का हूँ सिम मेरे, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय शंकर, जय महाराज, टेक केयर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

की पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी है, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मुस्कुराते रहें, आनंद के साथ सुनते रहें रेडियो डी 89.6 गंगा।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर

0: अरे सर, हर गाने का रिमिक्स क्यों कर देते हैं सर? सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता। नहीं आएगा कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर मेरे को।
1: गाने का इक्वल वैल्यू है।
0: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना।
2: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त टीसी मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
3: गंगापुर सिटी की धरती।

0: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार गंगापुर सिटी। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों, फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। और दोस्तों, जल्द ही आपका कार्यक्रम लेकर हाजिर रहूंगा, आपका मन पसंद फेवरेट हल्लू फरमाइश।
2: और दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमारे पास कॉल आया है मोनिका मीणा जी का। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: हम बताएं सर, आपका कहाँ से बात कर रहे हैं सर? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से?
4: गाने
3: जी

0: 89.6 पे रेडियो
1: डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
4: हेलो
5: जी नाम बताएं सर आपका
4: अरविंद मीणा
5: अरविंद जी कहाँ से बात कर रहे हैं
4: गंगापुर सिटी
5: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
4: बरसात
5: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पर बरसात सॉन्ग
4: ओके सर

0: DS. DS Science Academy. क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म. गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: DS Science Academy. नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास.
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव. क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है.
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए. अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर.
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे.
3: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर.
4: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का. मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ. बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर. परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम.

आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो DS 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो DS 89.6। आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी हो, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
3: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण डॉक्टर या इंजीनियर आईएएस या आरएएस राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन आज ही एडमिशन कराएं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500 प्रवेश प्रक्रिया आरंभ सीमित सीटें पहले आए पहले पाए
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475 दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6378024475 दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: विनोद कुमार सैनी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस?
1: सर, दर्द दिलों के कम हो जाते, डायक्सोस फिल्म का गाना है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे।
1: जी थैंक यू,
0: वेलकम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे रेडियो DS।
4: Hello friends, my name is Astha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career.
5: हेलो
6: जी, नाम बताएं।
5: शिवम।
6: शिवम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: गंगापुर सिटी।
6: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: चंबल गांठ वसूरे।
6: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करेगा।
7: हालातों के सितारे

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:33 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम में लो फरमाइश। दोस्तों हमारे स्टूडियो को लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहां बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
4: मैं आपका खाना सुनना चाहते हैं
5: हेलो
4: हेलो जी नाम बताएं
5: सनाज
4: सनाज जी कहां से बात कर रहे हैं
5: संजय कॉलोनी
4: पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते रेडियो डीएस से
5: मेरे दिल में खुदा जगह खुदा की खाली थी
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सनाज जी आपकी फरमाइश कैसे होंगे रेडियो डीएस में कॉल किया धन्यवाद

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है इससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूं तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
4: हेलो
5: हेलो
4: जी, नाम बताएं सर आपका।
5: नमस्कार सर जी।
4: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
5: सर जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी जी।
4: बताएं सर कौन सा गाना सुना।
5: हाँ सर, आज गाना सुना मैंने, ज्ञानी दुश्मन फिल्म का गाना है ना, मीठा ना कोई अंगूर जैसा।
4: अच्छा, बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
5: ओके सर जी, थैंक यू।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: सर नमस्ते, क्या नाम है आपका?
3: शिवम।
2: शिवम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: राधे की।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: मैडम जी।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश दे दो।

0: रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
2: अनुमा।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
3: पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएस में। कॉल किया, धन्यवाद।

0: सागर मीना।
1: सागर जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: डुमरी से।
1: पता है सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से? बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के
2: साथ। काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे, तू गीत मेरे दा कल्ला कल्ला लफ्ज हो जावे।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो DS89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में न डालें। रेडियो डीएस एवं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी।
3: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
4: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
3: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तीलू खेड़ा से।
4: सर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो।
3: दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं।
4: बिल्कुल सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो,
5: तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, मैं तुझे प्यार करूंगा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: डीएस
4: सर नमस्कार नाम बताएं आपका
5: ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ सर यहाँ गुजर क्या से
4: बताएं सर ठंडीराम जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से
5: सर वो है तेरी माया का न पाया कोई न पार
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के सुन

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर आपका।
0: अभिषेक।
1: अभिषेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे? गाना बताएं सर।
0: वेरियन वेरियन सिस्टम
1: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: गोविंद गुप्ता।
3: कहाँ से बात कर रहे
2: हो?
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: अमिताभ बच्चन और गाना जो है गाना गाती
3: है। ओके, सुना रहे हैं आपकी।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
4: नमस्ते
5: नाम क्या है आपका
4: रंजीत
5: कहाँ से बात कर रहे हो सुनना चाहोगे
4: रशियन
5: बैपन सुना रहे आपकी फरमाइश पर
6: If by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear

ट्यून कर रहे हैं रेडियो DSET 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

की पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी हो, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो डीएस 89.6।

0: हाँ सर नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जी सुना, पिक्चर का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, गीत है यशोमती मैया से बोले नंदलाला।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: अभिषेक लदा, कहाँ से बात करो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कब जी।
1: ओके मैम, ओके तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: बेटा जी डीएस रेडियो गंगापुर राजस्थान जी।
1: हाँ जी सर, सत श्री अकाल सर।
0: सत श्री अकाल बेटा, माय डियर डॉक्टर बेटा, सत श्री अकाल। पलक बेटा सत श्री अकाल, भाई ठीक ठाक है सेहत भाई जुड़ी?
1: हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: ठीक ठाक बेटा, घर परिवार भाई ठीक ठाक है, बढ़िया भाई।
1: हाँ जी सर, सब ठीक है।
0: अपने मीना सर को भी बेटा मेरी साथ फ्री का बुला लेना, ठीक है ना?
1: हाँ जी मैं बोल दूंगी सर। आपका नाम क्या है?
0: हाँ बेटा जी, मैं जी पिंड माउटकोट से जिला भिंडा पंजाब से जी तुम तो बोल रहा बेटा।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: बेटा मेरे ना जी रेडियो फ्रेंड ना दोस्त, मेरे सिस्टर ना एक मेरा ब्रदर है जी।
1: हाँ जी,
0: मेरे जी एक रेडियो मेरे रेडियो ना जी फ्रेंड ना दोस्त मेरे सिस्टर जी।
1: हाँ जी,
0: एक मेरा ब्रदर है जी, मेरे ब्रदर का नाम है जी संतोख सिंह जी, सरदार संतोख सिंह जी।
1: हाँ जी,
0: एक मेरी बहन है जी बड़ी, उसका नाम है जी भैन संतोख चीमा साहब जो कनेडा में है बेटा।
1: हाँ जी सर,
0: एक मेरी बहन है जी जस्सी चहल जी मलेरकोटला तो बेटा। अज उन्होंने फरमाया था बेटा एक पुरानी फिल्म है।
1: हाँ जी,
0: फिल्म है बेटा हाथी मेरे साथी।
1: हाथी मेरे साथी,
0: हाँ जी बेटा, बेटा उन्होंने एक बोल गुनगुना कर बताओ एक गीत है।
1: हाँ जी सर,
0: वो बेटा गीत है नफरत की दुनिया को एक ही रवला खुश रहना मेरे यार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है बेटा, जो दे रहे बाबा नाम सुन चलती आवाज रखे बेटा, प्यार से इसका
1: सत श्री अकाल
0: बेटा, सत श्री अकाल।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: हाँ जी, योगेश जांगड़े, मैं कराची से बोल रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: मैया यशोदा सुनवा देंगे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेगा ना पिघड़िया में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: यू वेलकम सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: लंबी लंबी
2: ओके सर, सुनाओ, फिक्र नहीं करिएगा।

0: जय इस छोरे गल्ला सेटिंग हो जा
1: जी साजा छोरा तो घना एंडी है
0: न्यू बता सेटिंग कितनी क्लियर है
2: सेटिंग का तो बेराना पर यार इतने हैं तेरा काकता वालिया ने भी ब्याह ले जाएंगे
3: हाँ जी रफी खान बोल रहा हूँ
4: हाँ जी सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे
3: आज तो पुकार है मेरे गीत रे
4: ओ किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाई

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सर नाम क्या है आपका?
1: नाम बाबू खान है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: साजन साजन पुकारूं गलियों में।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: वंदना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगा की चुकी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं सोहाई सुनना चाहती हूँ।
0: कौन सा?
1: सोहाई सिद्धू मूसेवाले का।
0: ओके

0: नाम क्या है आपका?
1: नाम शैलिंदर।
0: कहाँ से बात कर?
1: नसिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ढांडा नौले वाला गाना चला दो कोई सर में।
0: ओके
2: पे तीर अगर रख दे तेरी जत्थे सोच।

0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका? कहाँ से बात कर
1: रहे? सागर बच्चे से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: थोड़ा सा मिलने को दिल करता है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अली।
1: कहाँ से बात करो?
0: गन्ना पट्टी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये दुनिया ये महफिल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपको फरमाइश करिएगा ना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: आँख से जल का आंसू या टपका शराब में।
2: कौन सा सर, थोड़ा तेज बोलना।
3: आँख से जल का आंसू या टपका शराब में।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: पायल अग्रवाल
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: क्या
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी दयाल नगर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अगर तुम मिल जाओ।
1: ओके सर, गाना रेडी हो। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: कानू।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: फालोदा।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मन मेरा।
1: उसी पर सुनना, दूसरा गाना।

0: हम क्या आपका
1: लक्ष्मी ना
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो गंगापुर सिटी
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
1: Together.

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
6: डीएस कर

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगा फोर सिटी का तरीका पर, मैं आप करेंगे दोस्त से मिला। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के साथ आपने अभी सुना हेलो फरवाइस कार्यक्रम। दोस्तों हेलो फरवाइस कार्यक्रम को यही विदाई देते हुए कल इस समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों दोपहर का एक बज चुका है और थोड़ी देर में लेकर हाजिर होंगे आपका मन पसंद और फेवरेट कार्यक्रम नए तराने।

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है, और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनें और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी है, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो डी 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: ये रख लो पैसे।
1: क्या कर रही है थर्पी? आ गया
0: बावलट।
1: कौन?
0: पता नहीं, टारपी की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: Let's hear it once more, please.
1: ये उन सब के लिए ना जिन्होंने कुछ खोया हुआ है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: original gangster, the hardest of the hardcore, Mr. Jazzy B. Put the G in the Glock. Tick tock.
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
2: हर बीट में है शहर का कमाल.
3: DS 89.6 शहर की धुन.

0: आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है, और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी है, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजे या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो डी 89.6, गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीच में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए IIT और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

वहमों गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। हर बीच में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सास सुने थे कारी एकरम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कारी एकरम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: एक दूसरे से प्यार करते हैं।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश, कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है, और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनें और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं, सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी हो। हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।

0: गुड इवनिंग दोस्तों वक्त हो चुका है 4:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम मैं राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहां बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: 89.6 पे रेडियो DS
4: में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीच में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब,

0: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो,
2: क्या आपका?
1: नमस्ते जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ। आवी जी
2: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आवी जी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: सोए तो फोन लगाई नहीं थी।
2: नहीं सर, कॉलिंग तो 11 बजे तक खुल रही थी, आपने शायद लगाया नहीं होगा। कॉल तो आए थे सर सबके।
1: कई बार ट्राई किया नहीं बोल पाया। चलो अब लिख लो
2: जी। बताइए।
1: इश्क हंसाता है, इश्क रुलाता है।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS। 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6। 89.6 पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: जी नमस्ते।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: हल्दीराम गुजर बोल रहा हूँ, गांव बदुरका से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: ऊँची ऊँची बातों से प्रीत भरता नहीं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डी एफ में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे ऊँची ऊँची बातों से किसी का

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग बहन जी।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: साजन साजन पुकारूं गलियों में।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: ये वेलकम सर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रंग रसिया रंग जा रे।
0: ओके मैम, सुन रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो,
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ना जाने, रांझा ना जाने।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: 89.6 पे रेडियो DS
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6।

0: हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार
0: सर। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: आज तो बेहतरीन बेहतरीन गाने सुनाए आपने भाई साहब।
0: क्या बात,
1: मस्त कर रही आज को।
0: आज दीपा या पलक मैम बैठी है तो सर वही सुना रही है गाने। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: गाना साबिर बोल रहा हूँ, दूसरे मैदान से।
0: जी साबिर जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: गाना है छतरी ना खोल बरसात में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, ये बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपका। धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: गुलशन कहाँ से बात कर रहे हो? वृंदावन सिटी। कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: हाँ कर दे मेरी मौत और राखो राजी रहती।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी हर

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: आरबी गूगल।
0: बताएं मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: सो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: समीर खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नशे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बरसात।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, मरते दम तक रहेगा।

0: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए।
1: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: अरे सर, हर गाने का रिमिक्स कर देते हैं सर। हमारी जनरेशन को ये सब समझ में आता नहीं आ रहेगा। कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर, मेरे को
4: गाने का इक्वल वैल्यू है।
3: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना।
5: अगर तू समझ नहीं रहा है, ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि

0: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक।

0: बेबी।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6।

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: ए मेंडोलिन चल चालू करना।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
4: DS साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
5: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
4: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
5: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
4: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: गाइस, दिस इज मी गुराशी सिंह एंड दैट इज तजिंदर सिंह एंड आई रियली होप हमारे ये नया पंजाबी वेडिंग मैशअप आप लोगों को पसंद आया हो।
1: और अगर आपको ये मैशअप पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक।
2: में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: DS89.6 शहर की धुन
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
1: रेडियो डीएस
3: सारेगामा

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: DS Science Academy. क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म. गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: DS Science Academy. नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास.
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी.
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे.
3: हर बीच में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन.
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस. 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर. गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

बताता हूँ, भूषण सिंह गणेश आलोलिया इन दोनों आगे बैर न, तू ध्यान रखिए, अगर आज की पार्टी में कुछ पंगा होया तो तेरे हाथ से जींद की सीट गई।

DJ Fakira.